0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज

0: रंगा उदय देश मेरो एवरेस्ट
1: यो कृष्ण सार एफएम
2: 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज।

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: यो कृष्णसार एफएम
0: 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जत्तिकै तेज

0: खुशी के खबर, खुशी के खबर। हमार शहर नेपालगंज में ढेर बरस से सेवा डेटी आयल नेपालगंज नेशनल अस्पताल में ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से रोज दिन स्वास्थ्य सेवा डेटी आयल बा। ई अस्पताल में रोज दिन ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से ओपीडी सेवा देना के संगे ढेर सेवा डेटी रलेक जानकारी कराईटी।
1: जस्तक सर्जरी के सक्कू उपचार, प्रसूति व स्त्री रोग के सक्कू उपचार, नसा व हड्डी रोग के सक्कू उपचार, मस्तिष्क व मानसिक रोग के सक्कू उपचार, छाला रोग के उपचार, नाक कान घाटी रोग के सक्कू उपचार सेवा देती आयल बा।
0: ओस्तक सुगर, ब्लड प्रेशर, मुटु रोग, पेट, छाती, कलेजो संबंधी सक्कू उपचार, पैथोलॉजी लैब सेवा, वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और सक्कू सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महीनक अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल के सुगर और थायराइड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन ब्राल ऐना जानकारी फेन कराईटी।
1: नोट, ई अस्पताल कार्यरत सक्कू डॉक्टरन से हरेक महीनक अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा, अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जाँच में 20% विशेष छूट के व्यवस्था।

0: कैना पश्चिम नेपाल के अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डॉक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कांति आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में मिलत।
1: ए बात ठीक कहलो साची की अस्पताल में क्या का सुविधा मिलत?
0: वहाँ ता 24 घंटा इमरजेंसी सेवा, दैनिक ओपीडी सेवा, दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया, जरल घाव उपचार करना संगे NICU, PICU, ICU, हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहाँ पा जाए। छोट बच्चा हो भरखर जन्मल बच्चन के सामान्य से लेके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे उहाँ कई जाइत।
1: ए ओसी नो कला से उहाँ जाए मन फे ढुक्क हुईना चाहल रह।
0: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो। कांति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा। संपर्क नंबर 081-535-717। कांति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमारी स्नेहा।

0: ओहो आज डाइहर नै मजा लागत हो मजासे दवाई करेला कहतु
1: ए तो ओकर लाग कान्ति आरोग्य अस्पताल जाइन पश्चिम नेपाल के अनुभवी व उत्कृष्ट विशेषज्ञ चिरफार कैना डाक्टर से विश्वासिलो स्वास्थ्य सेवा यह कान्ति आरोग्य अस्पताल नेपालगंज में मिलत
0: ए बात तो ठीक कहलो साच्ची की अस्पताल में का सुविधा मिलत
1: वहाँ त 24 घंटा इमरजेंसी सेवा दैनिक ओपीडी सेवा दूरबीन और लेजर प्रविधि से शल्यक्रिया जरल घाव उपचार करना संगे NICU PICU ICU हाईटेक ऑपरेशन थिएटर हो सुरक्षित प्रसूति सेवा फे वहाँ पा जाइत छोट बच्चा हो भरखर जन्मल बच्चन के सामान्य से लेके जटिल रोग संगे सकु प्रकार के रोग के उपचार फे वहाँ कई जाइत
0: ए ओसिनो कला से वहाँ जाई मन फे ढुक्क हुईना चाहल रह
1: हो तो स्वास्थ्य हेरचाह कहले ठीक ठाउँ रोजना हो कान्ति आरोग्य अस्पताल सुर्खेत रोड नेपालगंज सक्कुमेरिक उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा अक्क ठाउँमा सम्पर्क नम्बर 081-535-717 कान्ति आरोग्य अस्पताल अपने हुकरन के स्वास्थ्य हमार स्नेहा
0: कान के समस्या बा उपचार करायला कहाँ ले जिना हो
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाई न वहाँ अनुभवी चिकित्सा को वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक से हरेक दिन कान के परीक्षण हुई वोत्रकेल कहाँ हो वहाँ तो लंबा समय से कान पकती रहना जीर्ण रोग काने धूसी कान खजुईना कान कम सुनना कान दम्मा हुईना बिरामी के उपचार ओ परामर्श वो लंबा समय से कान पकती रहले कान के जालिम पाल परल कान हद्दी खैना रोग के ऑपरेशन कई के उपचार फे हुई वकर संगे कान कम सुनना बिरामीन के लाग कान में लगैना ढेर प्रकार के कान के मशीन बिरामीन के रोजाई अनुसार उपलब्ध फे करा जाए जस्ते BTE CIC RIC सेवा वहाँ मिला
0: ए ओसिड हो कल से बुढ़ू हो वहाँ ले जाके उपचार करेल से वजह से सुनो से कही
1: एकदम समय में उपचार करैले से उपचार संभव बा बागेश्वरी स्वास्थ्य सेहार केन्द्र प्राली नेपालगंज 6 फुलटेकरा आर्मी ब्यारेक के सामने राप्ती रोड बाँके संपर्क नंबर 98-84-20-697 98-85-23-697 ओ 98-014-83-697 बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में सहभागी हुई नियमित कान के जांच करी
0: खुशी के खबर हमार शहर नेपालगंज में ढेर बरस से सेवा देती आयल नेपालगंज नेशनल अस्पताल में ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से रोज दिन स्वास्थ्य सेवा देती आयल बा ई अस्पताल में रोज दिन ढेर विशेषज्ञ डॉक्टरन से ओपीडी सेवा देना के संगे ढेर सेवा देती रलेक जानकारी कराईटी
1: जस्तक सर्जरी के सक्कु उपचार प्रसूति व स्त्री रोग के सक्कु उपचार नसा व हड्डी रोग के सक्कु उपचार मस्तिष्क व मानसिक रोग के सक्कु उपचार छाला रोग के उपचार नाक कान घाटी रोग के सक्कु उपचार सेवा देती आयल बा
0: ओस्तक सुगर ब्लड प्रेशर मुटु रोग पेट छाती कलेजो संबंधी सक्कु उपचार पैथोलॉजी लैब सेवा वीडियो एक्सरे डिजिटल एक्सरे और सबको सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पतालक संगे हरेक महीनक अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल के सुगर और थायराइड रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमन ब्राल ऐना जानकारी फेन कराईटी
1: नोट ई अस्पतालम कार्यरत सबको डॉक्टरन से हरेक महीनक अंतिम शनिवार निःशुल्क ओपीडी सेवा देना संगे जांच में 20% विशेष छूट के व्यवस्था करल बा नेपालगंज नेशनल अस्पताल बीपी चौक नेपालगंज संपर्क नंबर 081-536-465 98-239-80-665 ओ 98-482-80-465

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक एक बजेको छ.
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी.

0: के तपाईँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? पानी आपूर्ति, कृषि वा अन्य निर्माणका लागि गुणस्तरीय र टिकाउ पाइप खोज्दै हुनुहुन्छ?
1: त्यसो भए रोज्नुहोस् स्टार पोली पाइप। स्टार पोली पाइप इन्डस्ट्रिजले यस क्षेत्रमा मात्रै नभई नेपाल अधिराज्यभरि आफ्नो सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।
0: सिपिभीसी, पिभीसी, एचडिपिई, बोरवेल पाइप, ड्रेनेज पाइप तथा गार्डन पाइप लगायतका विभिन्न पाइपिङ समाधानका लागि सम्झनै पर्ने नाम हो स्टार पोली पाइप।
1: गुणस्तरीय कच्चा पदार्थ, आधुनिक उत्पादन प्रविधि र गुणस्तर परीक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै स्टार पोली पाइपले करायसीदेखि कृषि, व्यावसायिक तथा विभिन्न पूर्वाधारका आवश्यकताका लागि पाइप उत्पादन गर्दै आएको छ।
0: गुणस्तरमा विश्वास, उत्पादनमा निरन्तरता र सेवामा प्रतिबद्धता, स्टार पोली पाइप।
1: स्टार पोली पाइप इन्डस्ट्रिज प्राली, नेपालगञ्ज 18 बाँके। सम्पर्क नम्बर 98583039 र 98581129। स्टार पोली पाइप, गुणस्तरमा विश्वास, निर्माणमा भरोसा।
2: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
3: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान से कम सुनने वाले बीमारी लोगों के खातिर कान में यहाँ लगावे वाला मेर मेर मॉडल के कान के मशीन बीमारी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। जैसे BTE, CIC, RIC सेवा मिलत है।
2: अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
3: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली, नेपालगंज 6 फुलटेकरा, आर्मी बैरक के सामने, राप्ती रोड, बांके। संपर्क नंबर 98480-2697, 98583697 और 98014-83697।
4: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
2: खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
3: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से OPD सेवा हो, एक साथ तमाम मेर के सेवा हो रहा जानकारी करावा चाह जाता है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
3: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
2: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
3: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवेग जानकारी भी करावा जाता है।
2: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क OPD सेवा ले साथ ही जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
3: संपर्क नंबर 081-536-465, 98239-80665 और 98482-80465।
5: अब मूड़ और नस संबंधी रोग के खातिर लखनऊ न जाए पड़ी, आपके अपने शहर बहराइच में यहाँ अब विश्व स्तरीय न्यूरो सर्जरी सेवा उपलब्ध है। माँ पीतम्बरा ब्रेन स्पाइन एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां पर यहां उपचार के खातिर उपलब्ध हैं लखनऊ के अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर, जहां पर यहां बीमार लोगों के उपचार के खातिर लखनऊ के अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर शिवम ए मदेसिया से सहूलियत दर में यहां उपचार सेवा पावा जा सका जाते है।
6: हमरे यहां मुड़े चोट, मुड़े हड्डी के फ्रैक्चर, दिमाग के नस फटे समस्या, ब्रेन ट्यूमर, हाइड्रोसेफलास यानी कि मुड़े में पानी की चमक समस्या, दिमागी बुखार, माइग्रेन, ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया जैसे चेहरा में यहाँ दर्द, रीढ़ के हड्डी में यहाँ ट्यूमर, टीबी, रीढ़ के हड्डी के फ्रैक्चर के दूरबीन से ऑपरेशन, कमर दर्द, हाथ पैर में यहाँ झनझनाहट, हाथ पाँव में यहाँ सूजन, नस सटका, गटई में यहाँ अकड़न, रीढ़ में यहाँ जन्मिन से भावा घाव के उपचार होते है।
5: ब्रेन सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ट्रॉमा केयर, न्यूरो क्रिटिकल केयर और 24 घंटा इमरजेंसी के सेवा उपलब्ध है। ऐसन श्याम डायग्नोस्टिक से रोग जांचक गुणस्तरीय सेवा समेत उपलब्ध है।
6: स्थान अस्पताल रोड भीटू मल के सामने बहराइच। आज संपर्क किया जाए। संपर्क नंबर +91 911 844 2021 और +91 99 192 1611। ऐसे नेपाली नंबर 9769249329। ऊपर के दिया नंबर में यहाँ व्हाट्सएप से भी मैसेज और फोन कर सका जाता है।
1: तपाईलाई आफ्नो घरलाई सुन्दर, आकर्षक र आरामदायक बनाउने चाहना छ?
0: अब घरको सुन्दरता बढाउने उत्कृष्ट फर्निसिङका लागि टाढा जानै पर्दैन। नेपालगञ्जको सुर्खेत रोडमा रहेको छ अम्बे फर्निसिङ गार्डन।
1: आकर्षक सोफा सेट, आरामदायी बेड, स्टाइलिस डाइनिङ सेट, सुन्दर पर्दा, आकर्षक कार्पेट तथा घरलाई नयाँ रूप दिने विभिन्न फर्निचरका सामग्रीहरू।
0: तपाईँको रुचि, आवश्यकता र घरको सजावट अनुसार रोज्नुहोस्। मन पर्ने डिजाइन र रङ, उत्कृष्ट डिजाइन, आरामदायी अनुभूति र गुणस्तरीय निर्माणका साथ आफ्नो घरलाई बनाउनुहोस् अझ सुन्दर र विशेष।
1: खुसीको कुरा, तपाईँको सुविधाका लागि उपलब्ध छ होम डेलिभरी सेवा। नयाँ घर सजाउँदै हुनुहुन्छ वा पुरानो घरलाई नयाँ लुक दिन चाहनुहुन्छ? तपाईँको रोजाइको फर्निसिङका लागि सम्झनुहोस् अम्बे फर्निसिङ गार्डन।
0: आजै आउनुहोस् सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज। थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 98581249, 98025212149। अम्बे फर्निसिङ गार्डन, घरको सुन्दरता, आरामको नयाँ अनुभूति।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस तेज
1: काकी पाए लागी
2: खुश रहो भैया खुश रहो
1: आ रेडियो लिए घुमत हो
2: अरे इमा कोई प्रोग्राम हुआ सुने मारे रेडियो वाले बैठे हैं ना और का भैया
3: ए सैया मिले लर कैया में का करूं
1: तो काकी तू नहीं जाना था हम किरोमिया कार्यक्रम चना जोर गरम लेके आई थे किसी सारे फिल्म से दिन के 1 बजे।
2: अरे वाह भैया ये तो बहुत बढ़िया बात होगा। अब तो हम जाए थे सब गौवा मैया सबका बतेबे और सब जगह बतेबे कि चना जोर गरम आवत है कृषि सार एफएम 94 मेगाहर्ट्ज से दोपहर के 1 बजे से। और हाँ भैया सुनो ना यहू बतेबे कि राव मिया जी के साथ जरूर सुना जाए कार्यक्रम चना जोर गरम रेडियो कृषि सार एफएम 94 मेगाहर्ट्ज से दैनिक प्रोग्राम दोपहर 2 बजे से।

0: हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे है हमका प्यार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे है हमका प्यार। कार्यक्रम चना जोर गरम सुनने वाले सब यार दोस्त का प्यार भरा सलाम और नमस्कार। हाँ तो श्रोता, ये प्यारा से कार्यक्रम लेके आप लोगों के दुकान मकान खेत खरियान दाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर हम पर श्रोता संचालक मियाँ जी प्राइवेटिंग माँ जो सदा साथी रहे आज भी हमरे चंदा जी। हाँ तो श्रोता, आज 2083 छः महीना आज 29 गते है दिन आज बीफे है जिमा आप लोगन का प्यारा प्यारा नात कव्वाली से कार्यक्रम की शुरुआत हुई और नात कव्वाली सुने का मिली। तो आप लोग अगर अपने मन पसंद के नात कव्वाली सुने का है तो मैसेज पठवा दे, मैसेज में यहाँ अपने छोटकरी नाम पता ठिकाना और जो कव्वाली के बोल लिख के जरूर पठवा जी। ऐसे ही कार्यक्रम जो आप लोग सुना जाते देखा भी जाते आप लोगन के घर ना रेडियो किसने सारे एफएम पे फेसबुक में जावा जाए आपका पूरा किसने सारे एफएम के जत्ते कार्यकर्ता हैं सब लोगन का वीडियो में मिली है। वैसे तो ऑडियो में रेडियो सुना जाता है तो साथी नंबर में जुड़ा जी और लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहा जी। तो आज के कार्यक्रम जो आप लोगन के प्रिय रेडियो किसने सारे एफएम 94 MHz जो बिलासपुर बारा नेपालगंज बांके से प्रसार होते है जो पूरे विश्व में है जो आपके माना जाना हुआ किसने सारे एफएम जत्ते के तेज है उतते आप लोगन के पूरे विश्व में है। तो साथ ही आज के कार्यक्रम में यहाँ आप लोगन का जो हम क्वेश्चन रखबे क्वेश्चन के उत्तर दिया जी उत्तर दे वाले साथी का पुरस्कार दिया जाए पुरस्कार कहाँ से दिया जी का आप लोगन का भी बताई था आप लोगन के जो एकदम नंबर वन टेलर ज्योति टेलर सदर लाइन में है जहाँ हर मेर के लेडीज जेंट्स अड्डा ऑफिस कोट पैंट कुर्ता सलवार सफारी सूट दावरा सलवार सब मेर के कपड़ा कुशल कारीगर द्वारा सिया बनाए जाते हैं वहाँ से आपका टी शर्ट दिया जी। तो आज के क्वेश्चन आप लोग एकदम ध्यान से सुना जाए पहला नंबर में है सवेरे जन्म ले दोपहरे जवान होए, सवेरे जन्म ले दोपहरे जवान होए संझा के ख़त्म होए। हाँ तो साथी एक नंबर में है, दूसरे नंबर में है ना मुँह ना जबान फिर भी करे संसार भरे के बात। हाँ तो साथी दोनों का सही उत्तर दिया जी नेपाली में भी बता दिया हमारे श्रोता लोग तमाम नेपाली कार्यक्रम का सुनाते हैं कहते हैं अवधी भाषा नहीं जान मिलाता है तो उनका लोगन का नेपाली में भी बता दी। हाँ बिहाना जन्मिन छा दिवसो जवान हुंचा बिहाना जन्मिन छा दिवसो जवान हुंचा साझा मरछा के हो। हाँ एक नंबर में है, दो नंबर में यहाँ है ना मुख छन ना जिब्रो तरा पनी संसार भरी कूड़ा गर्छन। हाँ तो साथी ना मुँह है ना जबान है संसार भरी बात करत है। हाँ तो साथी दोनों का सही उत्तर दिया जाए उत्तर दे के आप लोग अपने किस्मत का आजमावा जाए अपने दिमाग बुद्धि का ताज़ा बनावा जाए पुरस्कार रेडियो किसी सारे एफएम से ले जाओ जाए। तो साथी आप लोग नंबर में जुड़ा जाए तो अब हम चले थे पहले छोटा सा व्यापारी विज्ञापन उसके बाद में सुना जी प्यारा से कव्वाली ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली मोहम्मद के दर पे चला जा सवाली।
1: यामाहा ब्लू फेस्ट यही असोज 23 गते देखि असोज 31 गते सम्म यामाहा शोरूम कारखानो नेपालगञ्जमा हुने नेपालकै बिगेस्ट एक्सचेन्ज मेलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। यो चाड पर्वमा यामाहा शोरूममा आएर दोब्बर खुसीका साथ उत्सव मनाउनुहोस्। आफ्नो पुरानो मोटरसाइकल वा स्कुटर लिएर आउनुहोस्। उत्कृष्ट एक्सचेन्ज तथा फाइनान्स अफरहरूको फाइदा उठाउँदै नयाँ यामाहा तुरुन्तै घर लिएर जानुहोस्। यो एक्सचेन्ज मेलामा तपाईँले पाउने विशेष अफरहरू साधन खरिद गर्नु अघि नै घरबाटै दर्ता गर्नुहोस् र 1,00,000 रुपियाँसम्म जित्ने मौका पाउनुहोस्। यामाहा खरिद गर्ने भेरिफाई गर्नुहोस् र 10,00,000 रुपियाँसम्म जित्ने मौका पाउनुहोस्। त्यस्तै हरेक हप्ता हाइटेक ग्याजेटहरू र बम्पर प्राइज अन्तर्गत यामाहा R15 जित्ने मौका प्राप्त गर्नुहोस्। यति मात्रै कहाँ हो र तपाईँको पुरानो साधनको ग्यारेन्टीका साथ अधिकतम मूल्याङ्कन पाउनुहोस्। तपाईँको कुनै पनि पुरानो साधनको मिनिमम भ्यालुएसन 50,000 रुपियाँ र एडिसनल भ्यालुएसन 8,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नुहोस् अनि यामाहा लैजाउँ घरमा नागरिकताकै भरमा। हजुर बिना कुनै झन्झटिलो कागजात मात्र नागरिकताको आधारमा अन द स्पट सजिलो फाइनान्स सुविधा उपलब्ध छ। यामाहा चंगा छे, जीतको नया अपग्रेड। यामाहाको खरिदमा 10 लाख रुपियाँसम्म जित्ने मौका नगुमाउनुहोस्। यस्तो मेगा एक्सचेन्ज न पहिला कहिले आएको थियो न छिट्टै आउनेछ। त्यसैले नेपाल टेलिकम बिल्डिङ नजिक कारकाँदो नेपालगञ्जमा रहेको यामाहा सोरुम भिजिट गर्नुहोस्। हाइटेक टू ह्विलरमा अपग्रेड गरी आफ्नो दशैंलाई साँच्चीकै अविस्मरणीय बनाउनुहोस्। अन्य जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 97090038739 र 97045898921। यामाहा ब्लू फेस्ट, नेपाल्स बिगेस्ट एक्सचेन्ज इभेन्ट, यही असोज 23 गतेदेखि असोज 31 गतेसम्म यामाहा सोरुम कारकाँदो नेपालगञ्जमा।
2: फाइनली नेपाल पुग्यौँ हामी।
3: डैड, नेपाल स्मेल्स डिफरेंट।
2: It's home.
4: Wow.
2: बुवा, डोगे।
4: भाग्यमानी भाइ बाबा।
2: घरको रङ नयाँ हो र?
4: तिमी यहीँ हुँदा गरेको।
2: 12 वर्ष एकदम नयाँ जस्तै छ। समय बदलिन्छ, जिन्दगी बदलिन्छ, तर माया र घरको रङ रहिरहन्छ। बर्जर वेदरकोट लङ लाइफ, यसको पियु र सिलिकन प्रविधिले घाम पानी छेक्छ, 12 वर्ष टिक्छ। बर्जर पेन्ट्स, रङ रहिरहन्छ।
5: समय बदलियो, पुस्ता फेरियो, तर साथ साथ उस्तै छ।

0: सिन कहाँ से नन्ना हो
1: छी दादू हो फे ठाहानी हो कि का उहट हो जे बीएस सिलाई मशीन सप्लायर्स
0: बीएस सिलाई मशीन सप्लायर मा कौन कौन मेर के मशीन पैठे हैं बाबू
1: उहाँ त अनमोल उषा ओ ताज ब्रांड का संग मेरमेरी कंपनी का सिलाई मशीन बिक्री ओ मरम्मत कई जिथा एकरक संग संग मशीन संबंधी सक्कु पाठ पुर्जा ओ सामान फे पाजी था अट्रगेल कहाँ हो कुशल कारीगर हुकन से मरम्मत फे करा जिथा
2: एकक संगे दस्या देवारी ओ छठ त्योहार सम 5-30% सम ग्राहक उपकरण के छूट के व्यवस्था कैलबा
0: बीएस सिलाई मशीन सप्लायर घरबाई टोल 2 पीपल चौतरा नेपालगंज बाके एक बेर सेवा करे के मौका जरूर देबी प्रोप्राइटर भरत सिंह परियार मोबाइल नंबर बा 9841828318 और नंबर बा 9824552478 एक बेर सेवा करे के मौका जरूर देबी
3: पिछले सारे फिल्म लगाए जो हमार पिया पिछले सारे फिल्म लगाए जो हमार पिया
4: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ट्ज कृष्णसार जस तेज

0: हाँ तो श्रोताई, छोटा सा व्यापारी विज्ञापन के बाद में आप लोगन का फिर से स्वागत है कार्यक्रम में। यहाँ तो इसे आप लोग नंबर में जुड़ा जाए, सुने कैसी 415 से बैस के लाइन में कोई साथी मेरे फोन लाइन में है, देखी को कहाँ से उनका स्वागत कैली। नमस्कार।
1: हेलो।
0: नमस्कार।
1: राम खिलावन थारू। हाँ
0: नमस्कार। अरे नमस्कार हो साहेब।
1: नमस्कार। जमनी सरपतिया राम खिलावन थारू।
0: अच्छा तो और सब ठीक है?
1: सब ठीक है, धान कटाई शुरू हाथ होए वाला है।
0: धान कटाई होता है?
1: होत है।
0: हाँ पानी तो हुई करी?
1: पानी है, जहाँ जहाँ गड्ढा रहा थोड़ा गहर खेतवा वहाँ वहाँ है।
0: हाँ तो खलार में पानी तो है ही है। तो राम खिलावन जी, कार्यक्रम सुना था शुरू से?
1: हाँ शुरू से सुनी थे।
0: हाँ तो उत्तर दियो।
1: पहले नंबर के हुए सूरज।
0: हाँ
1: अरे सूरज सूरज सवेरे उगत है, वो दोपहर और संझा मुरझा जाता है।
0: हाँ
1: और दूसरे नंबर के रेडियो।
0: रेडियो
1: ना जबान ना कुछ पर समाचार सुनाओ।
0: ले ठीक है राम खिलावन जी, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: हाँ साथी राम खिलावन थारू रहें, साथी जमनी सतपुतिया से कोई साथी हैं, देखी को कहाँ से हैं उनका स्वागत करी। नमस्कार।
2: नमस्कार अर्जुन। नमस्कार।
0: आपके नाम?
2: जी आर थी।
0: हाँ
2: जी आर थी।
0: बी आर थी
2: या जी आर थी?
0: जी आर थी।
2: बी आर थी। डी आर थी।
0: बी आर पी।
2: हाँ बी आर पी। हाँ
0: और बी आर पी अच्छा है?
2: सब ठीक है। क्या करा?
0: घर कहाँ है?
2: माछा घर। वो माछा घर।
0: बी आर पी थारू है ना?
2: बी आर पी ना बी आर पी
0: थारू तो हो?
2: हाँ थारू तो हुई है।
0: हाँ तो चलो माछा घर है ना?
2: हाँ माछा घर।
0: तो और कार्यक्रम अच्छे से सुना था शुरू से?
2: हाँ सुनते आती है।
0: तो क्वेश्चन के उत्तर दो।
2: पहले क्वेश्चन के?
0: हाँ
2: पहले क्वेश्चन तो सूर्य हो।
0: हाँ
2: वो दूसरा क्वेश्चन मोबाइल हो।
0: हाँ
2: दूसरा क्वेश्चन मोबाइल।
0: दूसरा मोबाइल।
2: हाँ
0: ठीक है। नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: हाँ साथी माछागर से रहें वीआईपी थारू जी, तो इसे सुने कैसी 415 122 के लाइन में कार्यक्रम चलत है जो आप लोगों के प्रिय रेडियो किसी सारे फेम 94.9 MHz से। तो साथी आप लोग एकदम नंबर में जुड़ा जाए कहे से कार्यक्रम जो आप लोगों के घर अंगना दुकान मकान खेत खरियान डाल पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर आप ही के प्रिय रेडियो किसी सारे फेम 94.9 MHz से ये कार्यक्रम चलत है। तो साथी आप लोग नंबर में जुड़ा जाए सुने कैसी 415 122 के लाइन में कार्यक्रम जो आप लोगों के प्यारा कार्यक्रम है। कोई साथी हमारे फोन लाइन में आ रहे हैं चले गए, आवे जाए तो जारी कर्म जारी है। तो साथी अब हम चली थे पहले व्यापारी विज्ञापन। हाँ सुना जाए प्यारा से कव्वाली, प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर मुझसे मिलने मिलाने का वादा करो।

0: जागीर को क्यों देखते हो और मेरे पांव की जंजीर को क्यों देखते हो। तुम तो कहते थे मेरी शक्ल से नफरत है तुम्हें, मुझसे छुपकर मेरी तस्वीर को क्यों देखते हो।
1: छुरी से तीर से तलवार से क्या होने वाला है, हमें तो इन हसीनों की नजर ने मार डाला है। नजर जो उठी तो दुआ बन गई, नजर जो झुकी तो हया बन गई, नजर तिरछी की तो अदा बन गई, नजर फेर ली तो कजा बन गई। नजर जब उठी मेहरबा हो गई, नजर जब मिली तो जवां हो गई, जो पलटी तो दिल की जवां हो गई, जो बदली तो एक दास्तां हो गई। नजर से हमने नजर को एक दिन नजर मिलाते नजर से देखा, नजर जो पहुंची नजर तक उनकी, नजर झुकाते नजर से देखा।
2: क्या बात है,
1: दिले

झूठा तुम्हारा प्यार भी झूठा, तुम्हारी जात भी झूठी, तुम्हारे होंठ भी झूठे, तुम्हारी बात भी झूठी, तुम्हारा हर इरादा हर तमन्ना हर गिला झूठा, तुम्हारे फूल झूठे बाग झूठा, आशियां झूठा, वफा झूठी जफा झूठी, सितम झूठा करम झूठा, कसम है सर से लेकर पांव तक तू ऐ सनम झूठा, तुम्हारा नाम झूठा, तुम्हारा

झूठा तुम्हारे अश्क हम झूठे तुम्हारा जख्म जा झूठा तुमसे बढ़ के कोई बेमुरव्वत नहीं प्यार करने की अब हमको फुर्सत।

दुल्हन बना के तुम्हें अपने घर में लाऊंगा, फिर उसके बाद में दुनिया को भूल जाऊंगा। मगर तुम बेवफा हो, तुम क्या जानोगे वफादारी। हम प्यार के पुजारी, तुम प्यार के शिकारी। सब कुछ है तुझमें लेकिन बस प्यार ही नहीं है। आंखें तेरी कहीं है और दिल तेरा कहीं है। काटी थी रात हमने गंगा किनारे गोरी, दोनों ने कसम खाकर बांधी थी प्रेम डोरी। मगर गम तेरी जुदाई का सहना है सहूंगा मैं, और ये आखिरी खत मेरा

जिस रोज बनो दुल्हन हाथों में लगा लेना, अब इसके सिवा तुमको क्या और दू नजर आना, उठे मेरा जनाजा शहनाई तुम बजाना, तड़प उठोगे वो नगमा जिगर से निकलेगा, मेरा जनाजा तुम्हारे ही घर से निकलेगा। हाँ।

नजर झुकाओ, हसीनों का एहतराम करो, है मेरा नाम जवानी मुझे सलाम करो, जो हुस्न चाहे तो लग जाए आग पानी में, अजी किसी हसीन को देखा भी है जवानी में, शमाने

प्यार सच्चा है तो फिर तुम मुझे रुसवा न करो। चांद ऊंचा है बहुत, चांद का सौदा ना करो। दूर से देख लो, छूने की तमन्ना ना करो। किसी आशिक से कोई वास्ता नहीं रखते हम,

0: फाइनली नेपाल पुग्यौँ हामी।
1: Dad, Nepal smells different.
2: It's home.
3: Wow.
2: बुवा ढोगे
3: भाग्य मानी भाइ बाबा,
2: घरको रङ नयाँ हो र
3: तिमी यही हुँदा गरेको
2: 12 वर्ष एकदम नयाँ जस्तै छ। समय बदलिन्छ, जिन्दगी बदलिन्छ, तर माया र घरको रङ रहिरहन्छ। बर्जर विथ कोट लङ लाइफ, यसको पियु र सिलिकन प्रविधिले घाम पानी छेक्छ, 12 वर्ष टिक्छ। बर्जर पेन्ट्स, रङ रहिरहन्छ।
4: स्वास्थ्य नै जीवनको अमूल्य सम्पत्ति हो, त्यसैले आफ्नो स्वास्थ्य र परिवारको उपचारका लागि भरपर्दो स्वास्थ्य संस्था रोज्नुहोस्। अब नेपालगञ्जमै अनुभवी चिकित्सक तथा विभिन्न स्वास्थ्य सेवा सहित मा जानकी अस्पताल प्राली,
5: जहाँ उपलब्ध छन् जनरल मेडिसिन सम्बन्धी सेवा, जनरल सर्जरी सम्बन्धी सेवा, स्त्री तथा प्रसूति रोग सम्बन्धी उपचार,
4: बालबालिका तथा नवजात शिशुको उपचार, माइक्रोबायोलोजी सहितको प्रयोगशाला सेवा, भिडियो एक्सरे तथा 300 mm सादा एक्सरे सेवा, एम्बुलेन्स सेवा र 24 घण्टा आकस्मिक सेवा उपलब्ध छ।
5: मा जानकी अस्पतालमा दूरबीन प्रविधिबाट पित्तथैलीको शल्यक्रिया सेवा पनि उपलब्ध छ। अस्पतालका प्रमुख कन्सल्टेन्ट सर्जन डाक्टर श्याम सुन्दर यादव MBBS भारत, MS पाकिस्तान, FICA शल्यक्रिया सम्बन्धी परामर्श तथा उपचार सेवा लिन,
4: त्यसैले स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या हुँदा समयमै सम्पर्क गर्नुहोस्। मा जानकी अस्पताल प्राली, ठेगाना नेपालगञ्ज 9 बाँके विद्युत कार्यालय नजिक, सम्पर्क नम्बर 081534628, 98527123। मा जानकी अस्पताल, तपाईँको स्वास्थ्य हाम्रो प्राथमिकता।
6: आमाको उपचार गरौँ भनेको कहाँ जाने होला?
7: कान्ति आरोग्य अस्पताल छँदै छ नि, पश्चिम नेपालकै अनुभवी र उत्कृष्ट विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सकद्वारा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि यही उपलब्ध छ।
6: हो र, यो अस्पतालमा के सुविधा छन् नि?
7: 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, दैनिक ओपिडी सेवा, दूरबीन तथा लेजर प्रविधिबाट शल्यक्रिया, जलेको घाउको उपचार गरिनुका साथै NICU, PICU, ICU, हाइटेक अपरेसन थिएटर र सुरक्षित प्रसूति सेवा पनि यही उपलब्ध छन्। अझ यहाँ त बालबालिका तथा नवजात शिशुहरूको सामान्यदेखि जटिल सबै रोगहरूको सबै किसिमको उपचार गरिन्छ नि।
6: त्यसो भए आमालाई लगेर आजै जानु पर्यो।
7: कान्ति आरोग्य अस्पताल, सुर्खेत रोड, नेपालगञ्ज, सबै किसिमका उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एकै छाना मुनि।
6: सम्पर्क नम्बर 081535717।
8: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई?
9: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राविधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जात है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देत हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान से कम सुनने वाले बीमारी लोगों के खातिर कान में यहाँ लगावे वाला मेर मॉडल के कान के मशीन बीमारी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। जैसे BTE, CIC, RIC सेवा मिलत हैं।
8: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो?
9: हाँ, तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली, नेपालगंज 6 फुलटेकरा, आर्मी बैरक के सामने, राप्ती रोड, बांके। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697।
10: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।

0: हाँ तो श्रोताई आप लोग जो प्यारा से कव्वाली सुनागा, खैर कव्वाली बहुत अच्छा रहा है, तो इससे आप लोग नंबर में जुड़ा जाए, सुना कैसी 415-122 के लाइन में एकदम आवाज़ आए। कैसे ही कार्यक्रम जो आप लोगन के घर अंगना दुकान मकान खेत खरियान डाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर आप के प्रिय रेडियो किसी सारे पे 94 मेगा से गूंज रहा है चेतना के धुन झनझन। हाँ साथी हुए किसी सारे पे पहला नंबर में है, आप लोग एकदम ध्यान से सुना जाए, पहला नंबर में है सुबेरे जन्म ली दोपहरे जवान भे संझा के ख़त्म हो गई एक नंबर में है। दो नंबर में है ना मुँह ना जवान संसार भरे माँ करत है बात। हाँ तो साथी दोनों का बतावा जाए का हो के उत्तर दिया जाए, उत्तर दे वाले साथी का पुरस्कार दिया जी। तो ऐसे आप लोग एकदम नंबर में जुड़ा जाए, नंबर में जुड़ के आप लोग एकदम अपने मन पसंद के कव्वाली ना तो गहरा सुन सका जाता है। तो आप लोग एकदम तैयारी में आवाज जाए, कैसे कार्यक्रम जो आप लोगन के प्रिय रेडियो किसी सारे FM 94 मेगाहर्ट्ज़ से चलत है। तो इससे हमरे कार्यक्रम में यहाँ जो हमरे साथी तमाम जने फोन लाइन में जुड़े रहते हैं, हाँ कोई आ चुके हैं देखी को कहाँ से हैं, पहले उनका स्वागत कर ली। नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार,
0: आपके नाम?
1: मोतीलाल यादव बाकी गांव से।
0: मोतीलाल यादव?
1: हाँ।
0: और बढ़िया है मोतीलाल जी?
1: बढ़िया दादा बढ़िया है।
0: बढ़िया हो चाहिए।
1: हाँ सब बढ़िया है।
0: तो कहाँ करा जाते से?
1: आराम करा से पहुँचे हम खाए वाए के नहीं।
0: तुम्हारे तो जिंदगी है आराम में। हाँ तो मोतीलाल जी उत्तर दिया जाए।
1: एक तो है सूरज।
0: हाँ
1: और दूसर रेडियो।
0: ठीक है नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: हाँ साथी मोतीलाल रहे बाकी गांव बाकी से, तो इसे साथी सुना कैसी 415-122 के लाइन में आवाज आए, कैसे कार्यक्रम जो आप लोगन के प्यारा कार्यक्रम है जो आप लोगन के घर अंगना दुकान मकान खेत खरियान डाड़ पहाड़ देश विदेश हर जगह पर चलत है। तो इसे हमरे कोई साथी, हाँ हमरे 2 बजे के टाइम के समय भी होगा है, तो साथी ऐसे नकीम अंसारी जो ओमान से मैसेज भेजी हैं, हाँ 2 बजे के टाइम चेक के बाद में हम नकीम जी आपके मैसेज पढ़ देवे, मगर कहीं अपने माँ बाप का तू दिल ना दुखा कव्वाली सुना दिया जी। ठीक है कव्वाली आपके आई जी। हाँ तो साथी आप लोग रेडियो के साथ ही रहा जी, अब हम चले थे पहले 2 बजे के टेम चेक के बाद में छोटा सा व्यापारी विज्ञापन, विज्ञापन के बाद में कव्वाली रेडियो से दूर ना जाओ जी।
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 2 बजे को छ।
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है। कहाँ जाये तो ठीक रही, तनी बताई दियो हमका।
1: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में यहाँ अपने घर के खातिर, ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जाते है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब पराली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ आर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथन टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथन बनावा भी जाता है।
0: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथन आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जाता है।
1: एक दफी सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुर्खेत रोड नेपालगंज बांके संपर्क नंबर 9844885375 और 9808254037।
2: नींद ना आए हमको हाय जग सोना
3: है। के तपाईलाई आफ्नो घरलाई सुन्दर, आकर्षक र आरामदायी बनाउने चाहना छ?
4: अब घरको सुन्दरता बढाउने उत्कृष्ट फर्निसिङका लागि टाढा जानै पर्दैन। नेपालगञ्जको सुर्खेत रोडमा रहेको छ अम्बे फर्निसिङ गार्डन।
3: आकर्षक सोफा सेट, आरामदायी बेड, स्टाइलिस डाइनिङ सेट, सुन्दर पर्दा, आकर्षक कार्पेट तथा घरलाई नयाँ रूप दिने विभिन्न फर्निचरका सामग्रीहरू।
4: तपाईँको रुचि, आवश्यकता र घरको सजावट अनुसार रोज्नुहोस्। मनपर्ने डिजाइन र रङ, उत्कृष्ट डिजाइन, आरामदायी अनुभूति र गुणस्तरीय निर्माणका साथ आफ्नो घरलाई बनाउनुहोस् अझ सुन्दर र विशेष।
3: खुसीको कुरा, तपाईँको सुविधाका लागि उपलब्ध छ होम डेलिभरी सेवा। नयाँ घर सजाउँदै हुनुहुन्छ वा पुरानो घरलाई नयाँ लुक दिन चाहनुहुन्छ, तपाईँको रोजाइको फर्निसिङका लागि सम्झनुहोस् अम्बे फर्निसिङ गार्डन।
4: आजै आउनुहोस् सुर्खेत रोड नेपालगञ्ज। थप जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9858212450, 9855212450। अम्बे फर्निसिङ गार्डन, घरको सुन्दरता, आरामको नयाँ अनुभूति।
5: नेपालगञ्जमा आरामदायी बसाई, स्वादिलो खानपान र आत्मीय सेवाको खोजीमा हुनुहुन्छ?
6: हो, त्यसो भए आउनुहोस् होटल पौवा नेपालगञ्ज।
5: आरामदायी कोठा, स्वादिष्ट परिकार, पारिवारिक तथा व्यावसायिक भेटघाटका लागि उपयुक्त वातावरण, कार्यक्रम तथा सभा समारोहका लागि व्यवस्थित हल र आत्मीय नेपाली आतिथ्य सबै एउटै ठाउँमा।
6: बसाई होस् वा भेटघाट, भोज होस् वा विशेष समारोह, तपाईँको हरेक अवसरलाई अझ विशेष बनाउने प्रयास होटल पौवा।
5: 10 वर्षको विश्वास सँगै नेपाली आतिथ्यको आफ्नै पहिचान।
7: होटल पौवा नेपालगञ्ज, आउनुहोस्, आतिथ्यको आत्मीयता महसुस गर्नुहोस्।
5: सम्पर्क नम्बर 081535527, 9857725527। सम्पर्क नम्बर 081535527, 9857725527।
8: ओहो, दसैँ तिहार आइसक्यो, नयाँ सोफा चाहियो नि।
9: सोफा किन्न कहाँ जाने, राम्रो ठाउँ बताइदिनु नि।
8: नेपालकै नम्बर एक सोफा फ्याक्ट्री सोफा हब नेपालगञ्ज जाने नि।
9: अफर के छ, उपहार के छ, सुनौ न त कुरा।
8: दसैँ तिहार झिलिली अफर, थाइल्यान्ड अफर देखि आकर्षक उपहार सम्म, सोफा किन्दा हात खाली नजाने।
9: ए साँच्चै, अनि अझ विशेष के छ? दसैँ तिहार झिलिली अफर, सोफा तथा फर्निचरमा 30% सम्म छुटको व्यवस्था। 35,000 को सोफा किन्नुहोस्, 35,000 कै फ्रिज स्क्रैच कार्ड मार्फत जित्नुहोस्।
8: साथै इलेक्ट्रिक जग, राइस कुकर, हिटर लगायत आकर्षक उपहार। 10 जना भाग्यशाली ग्राहकलाई निशुल्क थाइल्यान्ड भ्रमण।
9: अनि टिकटक, फेसबुक, इन्स्टाग्राम र युट्युब फलो गर्नेहरू मध्ये 1 जनालाई 35,000 रुपियाँको सोफा निशुल्क।
8: नेपाल भर डेलिभरी, 15 वर्षसम्मको ग्यारेन्टी।
9: थप जानकारीको लागि सोफा हब नेपालगञ्ज, फोन नम्बर 9705118470।
4: के तपाईँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? पानी आपूर्ति कृषि वा अन्य निर्माण का लागि गुणस्तरीय र टिकाऊ पाइप खोज्दै हुनुहुन्छ
3: त्यसो भए रोज्नुहोस् स्टार पोली पाइप। स्टार पोली पाइप इंडस्ट्रीजले यस क्षेत्रमा मात्र नभई नेपाल अधिराज्य भरी आफ्नो सेवा प्रदान गर्दै आएको छ।
4: सीपीबीसी पीबीसी एचडीपीई बोरवेल पाइप ड्रेनेज पाइप तथा गार्डन पाइप लगायतका विभिन्न पाइपिंग समाधानका लागि सम्झनै पर्ने नाम हो स्टार पोलीपाइप।
3: गुणस्तरीय कच्चा पदार्थ आधुनिक उत्पादन प्रविधि र गुणस्तर परीक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै स्टार पोलीपाइपले करायसीदेखि कृषि व्यावसायिक तथा विभिन्न पूर्वाधारका आवश्यकताका लागि पाइप उत्पादन गर्दै आएको छ।
4: गुणस्तरमा विश्वास, उत्पादनमा निरन्तरता र सेवामा प्रतिबद्धता स्टार पोलीपाइप।
3: स्टार पोलीपाइप इंडस्ट्रीज प्राली नेपालगंज 18 बाँके सम्पर्क नम्बर 98583039 र 98581129। स्टार पोलीपाइप गुणस्तरमा विश्वास, निर्माणमा भरोसा।
10: सबसे बताऊंगा अब ना छुपाऊंगा रेडियो कृष्णा सार अब हम लगाऊंगा।

0: रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्णसार जस्तेज
1: काकी पाए लागी
2: खुश रहो भैया खुश रहो।
1: आ रेडियो लिए घुमत हो।
2: अरे इमा कोई प्रोग्रामवा सुने मारे रेडियो वाले बैठे हैं ना और का भैया
3: ए सैया मिले लर कैया में का करूं
1: तो काकी तू नहीं जाना था हम किरौमिया कार्यक्रम चना जोर गरम लेके आए थे किसी सारे एफएम से दिन के 1 बजे।
2: अरे वाह भैया ये तो बहुत बढ़िया बात होगा। अब तो हम जाए थे सब गौवा मैया सबका बतेबे और सब जगह बतेबे कि चना जोर गरम आवत है कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ट्ज से दोपहर के 1 बजे से। और हाँ भैया सुनो ना यहू बतेबे किराउ मिया जी के साथ जरूर सुना जाए कार्यक्रम चना जोर गरम रेडियो कृष्णसार एफएम 94 मेगाहर्ट्ज से दैनिक प्रोग्राम दोपहर 2 बजे से।

0: जनता केबल 5 दशक देखी।
1: पिछले सारे फिल्म लगाए जो हमार पिया, पिछले सारे फिल्म लगाए जो हमार पिया।
2: रेडियो कृष्णसार FM 94 MHz, कृष्णसार जस तेज।

हाँ तो श्रोताई प्यारा से कवाली सुनागा छोटा सा व्यापारी विज्ञापन आप लोग नंबर में जुड़ा जाए सुने कैसी 415-122 के लाइन में आ जाए कैसे कार्यक्रम जो आप लोगों के घर अंगना दुकान मकान खेत करियान डाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर चलत है आप के प्रिय रेडियो किसी सारे फेम 94 MHz से। तो साथ ही आप लोग नंबर में जुड़ के अब जो क्वेश्चन है क्वेश्चन के उत्तर दिया जाए, क्वेश्चन के उत्तर दे वाले साथी का पुरस्कार टी शर्ट दिया जी कहाँ से दिया जी का आप लोगों का बताया जाते ज्योति टेलर से जो आपका पुरस्कार टी शर्ट दिया जी। तो साथी ऐसे जो ये कार्यक्रम जो आप के प्रिय रेडियो किसी सारे फिल्म 94 MHz से 1 बजे से 3 बजे तक कार्यक्रम रहा है जी माँ आपका एकदम तैयारी में आवक परी कैसे अब हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:26 हो चुका है अब जानो आधा घंटा कार्यक्रम बाकी है तो आप लोग नंबर में जुड़ा जाए लगी पे लगाओ तकदीर का आजमाओ जीता जाए परहेज और ज्योति टेलर से ले जाओ। तो साथी आप लोग एकदम नंबर में जुड़ा जाए और जुड़ के आए के कार्यक्रम में यहाँ अपने पुरस्कार ले जाओ जाए ये ज्ञान गुण की बात है। हमारे तमाम साथी लोग भी बताएने कहने कि थोड़ा नेपाली माँ भी समझाए के बता दिया जाए उधी भाषा नहीं जान मिलता है तो ठीक है नेपाली माँ भी बताए दे बिहाना जन्म हुंदा दिवसो जवान बिहाना जन्मिन छा दिवसो जवान हु साझा मर छा। हाँ एक नंबर माँ है दो नंबर माँ है दो नंबर माँ है कि आप लोग एकदम ध्यान से सुना जाइए दो नंबर माँ है माँ जहाँ अपनी जान छू जिब्रो अपने संसार भरी बात गर्छन। हाँ तो साथी दोनों का एकदम सही उत्तर दिया जाए उत्तर दे वाले साथी के यहाँ एकदम टी शर्ट दिया जी खुशी के साथ माँ। तो अब चलित है हम फिर छोटा सा व्यापारी विज्ञापन विज्ञापन के बाद माँ आप लोग फिर सुना जाइए कोई कवाली वगैरह कहे से कार्यक्रम के समय भी धीरे धीरे भागे लाग है और आप लोग नंबर में जुड़ के आवाज़ आओ मैसेज भी पठाते रहा जी। तो अब हम चले थे पहले प्यारा से कव्वाली तरफ तो सुना जाए प्यारा से कव्वाली।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र जाऊ ना, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में यहाँ ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करत हैं। साथ ही कान से कम सुनाई वाले बीमारी लोगों के खातिर कान में यहाँ लगावे वाला मेर मेर मॉडल के कान के मशीन बीमारी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। जैसे BTE, CIC, RIC सेवा मिलत है।
0: बस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहर केंद्र प्राली, नेपालगंज 6 फुलटेकरा, आर्मी बैरक के सामने, राप्ती रोड, बांके। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697।
0: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए। खुशी के खबर, हम लोगन के अपने शहर नेपालगंज में यहाँ सालों से सेवा देते आवा रहा नेपालगंज नेशनल अस्पताल में यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर लोगन से दैनिक रूप में यहाँ तमामन स्वास्थ्य सेवा प्रदान होते आवा है।
1: ये अस्पताल में यहाँ दैनिक रूप से तमाम मेर के विशेषज्ञ लोगन से OPD सेवा हो, एक साथ तमाम मेर के सेवा हो रहा जानकारी करावा चाह जाता है। जैसे सर्जरी संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: प्रसूति और महिला लोगन संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: नस और हड्डी रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: मस्तिष्क और मानसिक रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: चर्म रोग संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: नाक कान और गटई संबंधी संपूर्ण इलाज,
1: शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पेट, छाती, कलेजा संबंधी संपूर्ण इलाज,
0: पैथोलॉजी लैब संबंधी संपूर्ण चेक जांच किया जाते है,
1: वीडियो एक्सरे, डिजिटल एक्सरे और संपूर्ण सेवा सहित गुणस्तरीय अस्पताल के साथ हैं। हर एक महीना के अंतिम शुक्रवार काठमांडू मेडिसिटी अस्पताल से शुगर और थायराइड रोग के इलाज के खातिर डॉक्टर सुमन बराल आवेग जानकारी भी करावा जाता है।
0: नोट, ई अस्पताल में यहाँ कार्यरत संपूर्ण डॉक्टर लोगन से प्रत्येक महीना के अंतिम शनिवार निःशुल्क OPD सेवा ले साथ ही जाँच में यहाँ 20% छूट के व्यवस्था किया गया है।
1: संपर्क नंबर 081-536-465, 98-239-80-665 और 98-482-80-465।

0: हाँ, तो श्रोताई प्यारा से कव्वाली के बाद में फिर से स्वागत है आप लोगन का। तो आप लोग नंबर में एकदम जुड़ा जाए, कैसे कार्यक्रम जो आप लोगन के घर अंगना दुकान मकान खेत खरियान ढाड़ पहाड़ देश विदेश यानी हर जगह पर चला था आप के प्रिय रेडियो किसी सारे फेम 94 मेगाहर्ट्ज़ से। हाँ, तो साथी एक नंबर में है बिहाना जन्मिन छा दिवसो जवान उनछा सांझा मर छा, यानी सवेरे जन्म लेते है दोपहरे जवान होते संझा के मर जाते है। और ना मुख छन ना जिब्रो छन तरा संसार भरी कूड़ा घर छन, मैंने ना जवान है ना मुँह है फिर भी संसार भरे के बात करत है। तो साथी दोनों का सही उत्तर दिया जाए, उत्तर दे वाले साथी का पुरस्कार दिया जी। कहाँ से दिया जी, कहाँ दिया जी? तो साथी आपके माना जाना हुआ ज्योति टेलर सदर लाइन में है, वहाँ से आपका पुरस्कार में टी शर्ट दिया जी। इसे आप लोगन के पठवा मैसेज हमरे हाथ में आ चुका है। मैसेज भेजे वाले साथी हैं मोहम्मद अफरोज खान जो संगम टेलर जो नेपालगंज बाके से। ये कहने की मियाँ जी कोई साथी फोन लाइन में है, पहले उनसे बात कर ले। नमस्कार।
1: सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: से भद्रा सिंह कृपाली बोल रहे हैं।
0: और भद्रा सिंह
1: ठीक है जी, अपना बोलिए।
0: हमारा तो सब ठीक है, आपका बताइए।
1: दशहरा लगा है थोड़ा बहुत,
0: लगा लियो आधा पौवा बोतल।
1: बोतल अभी तक नहीं पहुंचा है, आधा अचानक आया है।
0: अभी इन दुइन गोड़ के लूले भे, अब हाथों के लूले हो जी, दारू छोड़ दो।
1: काहे छोड़ी, दारू बनाए वाले के काम में कार्रवाई करो।
0: कहते दरुआ ना पियो मोरे राजा, जवनिया माटी हुई है ना।
1: तो दारू बेचे वाले के पारे वाले के कार्रवाई को लगाओ।
0: अरे तो कोई पारे वाला का कोई रोड में गोबर बटोर के लगा दे तो वो कहीं लेके खा ले हो।
1: नहीं वो तो ना खाए, वो तो खाए खाते।
0: क्वेश्चन के उत्तर दे, क्वेश्चन के उत्तर दे।
1: तो अब लगावा दे जी, बाजार से आए हैं।
0: अच्छा तो सुनो ना, बिहाना जन्मिन छा दिवसो जवान हुन्छा सांझा मर्छा के हो? एक नंबर मा, दुई नंबर मा ना मुख छन ना जिब्रो तरा पनी संसार भरी कूड़ा घर छन।
1: पहला को तो सूर्य भगवान हुन,
0: और ना मुख छन ना जिब्रो छन तरा संसार भरी कूड़ा घर छन।
1: एहम रेडियो
0: ठीक है। नमस्कार।
1: नमस्कार, सलाम वालेकुम।
0: हाँ साथी रहे भद्रा सिंह सिरपाली सी गांव से, कहते हैं आज लगाए लिया दो चार पौवा। तो ठीक है, अब दशहरा तो लागिन जात है, तो साथी थोड़ा हिसाब से खावा पिया जाई, और नहीं तो पुलिस प्रशासन टाइट करे पाए जी तो खोपड़ी के बाहर न राखी काट बहा दी चमड़ी। तो साथी थोड़ा हिसाब से पिया खावा जी, दारू गांजा भांग नहीं, हम तो कहते इसे दूर ही रहो तो बहुत अच्छा है, ये सब गंदी बात है, ये सबसे दूर रहो कहते वही वाली हाल। हाँ तो साथी ऐसे ही मोहम्मद अफरोज जो संगम टेलर से मैसेज भेजी ना है, लेकिन ये सबसे पहले मियाँ जी आपका पूरे रेडियो परिवार का प्यार भरा नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। तो ये कहने हमका कव्वाली सुनाए दिया जाए, वही कव्वाली है जो कहने की मदीने में हमको बुला लो कमली वाले, नात हो कव्वाली ना हो ई, कहने मदीने में हमको बुला लो कमली वाले। ठीक है, अगर मिल गया जो हम बजा देवे कव्वाली आपका। तो साथी हैं इनके कृष्णा परियार हैं, सुभाष हैं और पूरे स्टाफ का और जितने इनके घर परिवार साथी संगी सब लोगन का। ऐसे दोसर मैसेज आवा है, मैसेज भेजे वाले साथी हैं शिवानी गिरिल उद्योग जो ही चार बाबा कुट्टी जो ही इमलापुल से मैसेज भेजी ने विजय कुमार वर्मा जी, इन्हो कहने कोई प्यारा से कव्वाली सुना दिया जी मियाँ जी। ऐसे दोसर मैसेज है नीतू हेयर कटिंग सैलून जो खजुरा बाजार से मैसेज भेजी ने बिंदुश्री ठाकुर जी, इन्हों कहने कोई प्यारा से कव्वाली सुना दिया जी। ऐसे नान बाबू पहुना पान भंडार से मैसेज भेजी ने इन्हों कहने कोई प्यारा से कव्वाली सुना दिया जी। महमूद खान रजनवा बांके से मैसेज पठाइन है कहने की कोई प्यारा कव्वाली सुना दिया जी। हम अपने लड़का जो मुबारक सऊदी में है उनका विशेष कह के सुनाओ चाहते घर परिवार का साथी भाई लोगन का। तो साथी अब हम चले थे पहले व्यापारी विज्ञापन तरफ।
2: सुविशु अपॉर्चुनिटी 1982 उत्सव को अवसर में प्रस्तुत सुविशु अपॉर्चुनिटी। यस योजना अंतर्गत ग्राहक 25 MBPS इंटरनेट र क्लियर टीवी को फुल HD पैकेज प्रति महीना मात्र रु 1040 र 65 भन्दा बढी HD चैनल भएको क्लियर टीवी को पैकेज प्रति महीना रु 221 मा साथै दामी म्युजिक को प्रीमियम पैकेज 3 महीना का लागि निशुल्क। शर्त र नियमहरू लागू हुने छन्। थप जानकारी का लागि www.subisu.net.np। सुबिसु।

हाँ तो श्रोता आप का किया जाए कार्यक्रम का एकदम अंत अंत में अब हमरे स्टूडियो के घड़ी में 2:54 हो गया है। अब हम विदा ले एकदम समय होगा हमरे प्रावधिक जी एकदम हाथ जोड़े बैठे कि मियाँ जी अब समय के पाबंदी पर चले पड़त है। तो साथी आज के कार्यक्रम जो आप लोग अपने अपने जगह पर बैठ के सुनागा आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते है। और आप लोग फ़ोन लगाए के सहभागी बनागा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देते है। आपके आज कोई सही उत्तर नहीं है, जितने हमरे नेशनल लोग फ़ोन लगाए श्रोता लोग कोई के सही नहीं है का दिमाग बुद्धि लगावा जी अगले कार्यक्रम में का हम फिर से रखबे हाँ बी फेंके। और आज के कार्यक्रम में यहाँ हमरे विजेता कोई नहीं भे हैं। तो साथी कार्यक्रम में यहाँ जो प्राइज करावा ले रहा है ज्योति टेलर के उनके पूरे स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनका भी। और कार्यक्रम का देश दुनिया में ऑडियो वीडियो दोनों पहुँचावा ले हमरे प्रारंभिक में जो चंदा जी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते है। प्यारा से कव्वाली के साथ में पर श्रोता संचालक मियाँ जी विदा ली थे। खुदा हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम नमस्कार।

0: बाबा के कान पिरात है, दवाई करावे खातिर कहाँ ले जाई।
1: बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र जाऊ न, यहाँ अनुभवी विशेषज्ञ और वरिष्ठ कान स्वास्थ्य प्राधिक लोगन से हर एक दिन कान परीक्षण किया जाता है। इतन कहाँ, यहाँ तो लंबे समय से कान पकते आवा, जीर्ण रोग, कान में ढूसी भवा, कान खजुआब, कान से कम सुनाई देव, कान बंद हो, बीमारी लोगों के दवाई दरमत और सुझाव सलाह देते हैं। और साथ ही लंबे समय से कान पकते आवा, कान के जाली में छेद भवा, कान के हड्डी गले वाला रोग के शल्य क्रिया द्वारा दवाई करते हैं। साथ ही कान से कम सुनाई वाले बीमारी लोगों के खातिर कान में यहाँ लगावे वाला मेर मेर मॉडल के कान के मशीन बीमारी लोगों के इच्छा अनुसार उपलब्ध करावत है। जैसे BTE, CIC, RIC सेवा मिलत है।
0: ए अस है तो बाबा के यहाँ ले जाए के दवाई करावे से बढ़िया से सुने लगी है तो।
1: हाँ तो समय में यहाँ दवाई करावे से दवाई दरमत संभव है। बागेश्वरी कान स्वास्थ्य सेहार केंद्र प्राली, नेपालगंज 6 फुलटेकरा, आर्मी बैरक के सामने, राप्ती रोड, बांके। संपर्क नंबर 98480-2697, 98580-2697 और 98014-83697।
2: बहिरोपण निवारण कार्यक्रम में यहाँ सहभागी हुआ जाए, नियमित रूप से कान के जांच करावा जाए।
0: हमका बिहा के खातिर सोफा दराज, डाइनिंग जस सामान और ऑफिस के खातिर सामान खरीदे रहा है, कहाँ जाए तो ठीक रही, तनी बताए दो हमका।
3: सुना जाए आपका हम बताई थे, आप नेपालगंज में यहाँ अपने घर के खातिर, ऑफिस या तो दुकान के खातिर गुणस्तरीय फर्नीचर खरीदे चाह जात है तो अर्बन फर्नीचर एंड फर्निशिंग हब प्राली में यहाँ जावा जाए। हुआ पर यहाँ आर्डर के अनुसार बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ऑफिस टेबल, ड्रेसिंग टेबल, दराज, जस तमामन मेर के फर्नीचर के सामान मिलत है। उके साथ टिकाऊ सामान, आकर्षक डिजाइन और उत्कृष्ट फिनिशिंग के साथ बनावा भी जाता है।
0: किफायती मूल और मैत्रीपूर्ण सेवा के साथ आपकी आवश्यकता के हिसाब से फर्नीचर तैयार किया जाता है।
3: एक दफी सेवा करे मौका दीन जाए। संपर्क के खातिर सुरखेत रोड, नेपालगंज, बांके। संपर्क नंबर 98448-3575 और 98085-4037।
4: नींद ना आए हमको, हाय जग सोता
5: है। बैक टू बैक,
6: हिंदी सॉन्ग
5: ऑन, स्टे ट्यून्ड।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
2: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: ओहो, दसैँ तिहार आइसक्यो, नयाँ सोफा चाहियो नि।
1: सोफा किन्न कहाँ जाने? राम्रो ठाउँ बताइदिनु नि।
0: नेपालकै नम्बर एक सोफा फ्याक्ट्री सोफा हब नेपालगञ्ज जाने नि।
1: अफर के छ, उपहार के छ, सुनौ न त कुरा।
0: दसैँ तिहार झिलिली अफर, थाइल्यान्ड अफर देखि आकर्षक उपहार सम्म, सोफा किन्दा हात खाली नजाने।
1: ए साँच्चै? अनि अझ विशेष के छ?

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: ओहो, दसैँ तिहार आइसक्यो, नयाँ सोफा चाहियो नि।
1: सोफा किन्न कहाँ जाने? राम्रो ठाउँ बताइदिनु नि।
2: नेपालकै नम्बर एक सोफा फ्याक्ट्री सोफा हब नेपालगञ्ज जाने नि।
1: अफर के छ, उपहार के छ, सुनौ न त कुरा।
2: दसैँ तिहार झिलिली अफर, थाइल्यान्ड अफरदेखि आकर्षक उपहारसम्म, सोफा किन्दा हात खाली नजाने।
1: ए साँच्चै? अनि अझ विशेष के छ?
3: दसैँ तिहार झिलिली अफर,
1: सोफा तथा फर्निचरमा 30% छुटको व्यवस्था। 35,000 सोफा किन्नुहोस्, 35,000 फ्रिज स्क्रैच कार्ड मार्फत जित्नुहोस्।
2: साथै इलेक्ट्रिक जग, राइस कुकर, हिटर लगायत आकर्षक उपहार। 10 भाग्यशाली ग्राहकलाई निशुल्क थाइल्यान्ड भ्रमण।
1: अनि टिकटक, फेसबुक, इन्स्टाग्राम र युट्युब फलो गर्नेहरू मध्ये 1 35,000 सोफा निशुल्क।
2: नेपाल भर डेलिभरी, 15 वर्षसम्मको ग्यारेन्टी।
1: थप जानकारीको लागि सोफा हब नेपालगञ्ज, फोन नम्बर 97 0511 48 70।

0: 94 MHz कृष्णसार जत्तिकै तेज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी